वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याही है जिह जिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया घर नौने दया में ताय सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तर के बोलना जी पंजा प्यारिया चौहान साहब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ह नाम जपया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता तिना प्यारिया सचारिया की कमाई का ध्यान तर के बोलना जी जिन्हां सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तन आरिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सदके सां सवासां संग निभाया तिना समूह शहीदां की कमाई का ध्यान तर के बोलना जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तर के बोलना जी प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छया रियायत देग देग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सुहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी

मच्छंदरनाथ। मच्छंदरनाथ अपने शरीर नूं छड़ के सूक्ष्म शरीर बाहर कढ़ के ट्रैवल कर सकता सी, उहदे कोल साधना सी। जिहड़ियां 18 सिद्धियां हुंदियां ने, 18 सिद्धियां चों इक सिद्धि इह वी हुंदी आ वी शरीर त्याग के सूक्ष्म शरीर कढ़ लैणा।

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु।

नमः, सद्गुराय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो।

उदारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भन बसाय प्रभ कै सिमरन दुख जम नसाय

प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरय मुचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझ्जय, प्रभु के सिमरन सबके सुजय, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाहे, अमृत नामृत माहे समाये।

Go simrese purkh pradhan prabhu go simrese be mahataje prabhu go simrese sarv ke raje prabhu go simrese sukhvasi prabhu go simrese sada vinasi simrante lage jine aap dayala nanak jan ki mangir wala prabhu go simrese par upkari prabhu go simrese tan sad balihari prabhu go simrese mukh swabe prabhu go simrese tan sukh behava prabhu go simretan atam jita prabhu go simretan nirmal rita prabhu go simretan anand kanere prabhu go simre base har re re sant kripate andar jag nanak simran pura bhag prabhu ga simran karj pure prabhu ga simran kabhu na chure prabhu ga simran har gun bane prabhu ga simran sahas samani prabhu ga simran nichal asan prabhu ga simran kamal begasan prabhu ga simran anahat chunkar सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरह से जान जिन को प्रभ मया नानक तिंजन सरणी पाया हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरनी चंकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगले आकारा हर सिमरन में आप निरंकारा

के प्रभसात अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई ऊहा मन ऊहा नाम तेरा संग सहाय जय महाभयान दूत जम दला तह केवल नाम संग तेरा चल जय मुश्किल होवे अथ भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुना चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख नेरे सगल सठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंदना भर हर का नाम जपत नेसो तरह अनक माया रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत अगावे जे मार के जात अकेला तै हर नाम संगोत सुहेला ऐसा नामन सदा त्याई नान गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लगवाही नाम जपत पार पराही अनक बिगन जाए संगारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जोन

न्यवलीकर्म कर आसन जैन मार्ग संयमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तापी होमे मैल न जावे अर्के नाम संसर्ग शनाहे नान गुरमुख नाभ जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटै गुरु गर्भ गुमान न मंते हुटाए सोज करै दिन सर रात मन की मैल न तांते जात इस देही का भाव साधना करे मंते कभू न बिख्या ठरै जल तो वह बहुत नीत शुद्ध कावे काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम मुद्रे पतत बहुमूच बहुत सियाण जमका भाव ब्यापे अनक जतन कर त्रिशन्ना द्रभै पेख अनेक अगन ने बुझै गोट भाव दुर्गे ने सज्जै छूट सनाही ऊभ पयाल मोह ब्यापे माया जाल अवर कर तूत सगली जमंडाने गोविंद भजन मंदिर लहि माने हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह सुभाए।

अंतरजामी अपनी गत में जानो आपे आपन संगा प्रभु राते तुम्हारी उस्त तुम ते हुए नानक वर ना जान सकुए। सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम बला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जसन दर्शन बखानी।

अपनी अमान कश बहुर सारे अज्ञानी मंदरोस करे अपनी प्रतीता भी खोवा है बहुर का विश्वास न हो वह जिसकी बस आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा मान माते उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सरपर होवत जान अनेत बिरखी छाया सुरंग लावै ओ बिन से मन पछतावै जो दिसै सो चालन हाल लपट रहो तय अंध अंधार बटाऊ से जो लावे ने दागु हाथ न आवे के हे मन हर के राम की बरी सुखदाई

अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तुष ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तल्लावे तिसको सिमरत परमगत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मनंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याया त्यामन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग तबर लुभावे जय प्रसाद सुख से जय सो जय मन आठ पहर ताका जस गाविजय जय प्रसाद तू सब कहो माने मुक्ता को दस रसन बखाने जय प्रसाद तेरु रहता धर्मन सदा।

भगवत साधक संग मिटा अभिमान साधक संग प्रकटा सुगियान साधक संग विजय ब्रह्म नेरा साधक संग सबोतन सांग सबोतन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक पर जतन साधक महिमा भरने कौन बरानी नानक साधक शोभा ब्रह्मा है समानी साधक संग अगोचर मिला साधक संग सदा पर भुलाय साधक संग आवे बस पंचा सा संग अमृत रस पंचा सा संग हुए सबकी रेन साधक संग मनोहर बहन साधक संग न कतुता सा संग अस्तित मन पावे साधक संग माया ते बिन सा संग नानक प्रभ सुप्रसन्न सा संग दुश्मन सा मीत साधु कह संग महापुनीत सा संग किस्यु नहीं बैर साधक संग ना भिंगा पैर साधक संग नाही को मंदा सा संग जाने परमानंदा साधक संग नाही हो ताब साधक संग तजे सब आप अपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बढ़ाई साधक संग ना कबूता

पलायन साधुसंग अमृत गुण गायन साधुक संग सर्वधान गम नानक साधुक संग सफल जनम साधुक संग नहीं कशगाल दर्शन पेड़ होत रे हाल साधुक संग कलुकत हराय साधुक संग नरक पर हराय।

ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जेक जो बसुदा कहु खोद कहु चंद्र ले ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पावका सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मानो ए प्रगा जैसे धारु भरिया आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान।

वैष्णो सोज सुपर सुप्रसन विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म कर तो वह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म का उफल की इच्छा नहीं बाछ केवल भगत कीर्तन संग राचा मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरे नाम जपावे नानक वैष्णो ब्रह्म गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मंत्र बिंसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मल खोवे तस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल कराय नित नीत मंत्र अरभ विशन प्रीत हरके चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म है शुद्ध है राम नाम सारस भीवस पंडित के उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नया वह भेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुखम जाने स्थूल

सासंग भावे जन को घर कृप अंदर उतारे पास प्रेत मुगत पात्र को उतारे सर्व रोग औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कि न पाइय धर्म नानक तस मिलाय जिस लिखिया धूर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास।

राष्ट्रपति संदगे दुख ने यार जागट है, संदगे दुख ने जमता है ने छुटा है, संदगे दुख ने सुख सब जाए, संदगे दुख नरक में पाए, संदगे दुख ने मत होए मलीन, संदगे दुख ने सो बाते हीन, संदगे हाथे को रखे ना कोए, संदगे दुख थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे नानक संसंग नंदक भीतर, संत गै दुखन ते मुख पवै, संतन गै दुखन काग जो लवै, संतन गै दुखन सरो सर्व जोन पाए, संत गै दुखन त्रिगत जोन किरमाए,

हाथ जिसका हुक्म भूज सुख होए जिसका नामरा कंठ परोए सिमर सिमर सिमर ब्रह्म सोए नानक बिघन न लागे कोए उसत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार।

नाना चलत करे खिन माय पूर पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान कर नाओ नाम के धारे सगले जंद नाम के धारे खंड ब्रह्मंड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आगास पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुरियां सब भवन नाम के संग तरे सुन श्रवन कर कृपा से अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनक दपाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करदूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मल जिसे बुझाए तिसे सपली सतनाम प्रभु का सुविधा विश्वास सतनान गुरते पाई सत भजन साधु उपदेश सत्य जन जाग हृदय प्रवेश सत नृत बुझे जय कोय नाम जब तागी गत हो आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सुरसो करने हार वरना बूझ करत विचार करते कि मित ना जाने किया नान ज्योत स्वभावें सुवृतिया बिस्म

की जनका संग एक लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलो आद सच जुगाद सच है पे सच नानकोसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत अमनहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभगता सुरत सत सत जस सुनता बुजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सास रूप हृदय जन मान्या करण कराम दिन मूल पछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान मन प्रगटाया पैदे नरबोए बसाना सिव जया तस्माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई तागो भिन्ना कहना जाई बुझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेव गया गया गारी ठाकुर का सेव सदा पूजारी।

अंधकार दीपक प्रकाशे नानक परम मोह नानक परम मोह दुख तैते नासे तब तमाए ठांड वरताई अंध पै दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे आंदे से साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चुका निर्भय बसे सकल ब्याद मंते खै नसे जिसका साध दिन कृपा धारी सासंग जप नाम मुरारी तित भाई चुके ब्रह्म गमन सुन नानक हर हर जस श्रमन निर्गुण आप सरगुण भी ओहि कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभा बनाए अपनी कीमत या बह पाए हर बिन दूजा नाही गोय सर्व निरंतर एको सोए बोध बोध रव्या रूप रंग वे प्रकाश साध गय संग रचना रच रचना अपनी गलत हरियन गबार नानक बलिहारी सलोक साथ ना चाले बिन भजन बिख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानके धन सार अष्टपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार प्रभाव समीत विसारो चरण कमल हृदय उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गह हो नाम रथ ए तन संचो वो भगवंत संजना का निर्मल मंत एका सराखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार गुण टुटता में सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुकुनत बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा बज हर की सरणियन को पावी रोग ना जाहे रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निदान मेर नाम निदान जब नानक दरगे परवान मन प्रबुद्ध हर कह राय दैद स्थावत तावर दैद स्थावत आवा ठाए तागो बिघन न लागे कोय जागे हृदय बसय हर सोय कल ताती ठंडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पवन से पूर्ण हुए आस भक्त पाया तम बरगास तत्कर जाए बसे बनासी कहो नान काटी जम फांसी तद विचार कहे जन साजा जन्म मरै सो काचो काछा आवा गमन मिटे प्रभ सेवा आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का वही उदार हर हर सिमर प्राण आधार रंग भावना छुट्टन हारे सिमरत सासमेत बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन मंजत नानक फल पाए संगना चाल तेरे तना तुम क्या लपटावे मूर्ख मना सुतमीत कुटम अर बनता अंते कहो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विसार अंते कहो कमन छुटकार अस्ति रथ सवारी झूठा डम झूठ पा सारी जिंती है तुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मातू ले याने भगत बना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल हुए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के कल बिग जाहे आप जपो अबरा नाम जपावो संत गैद रात गद बाबो सार पू सतर को राम सह सुभाए नानक गुन गाव तिरुतर समैल बिन जाय होमे बिक फैल होए अजन बसे सुख नाल सास ग्रासर नाम संभाल छाड सियानम सगली मना सा संग पावे सच तना हर पूंजी संज करह व्यवहार यहाँ सुख दर गया जयकार सर्व निरंतर एको देखो नानक जाके मस्तक लेख

जब इसका वर्ण चिन्ह जाप तब हर्षो कव के से व्याप जब अपने आप आपार ब्रह्म तम हो कहा के सुबत ब्रह्म अपन खेला भरतीजा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनि तब बांध मुक्त कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहो गिद ठाए जब आपे आप अपनी जो तरह तब कमन डर कमन कत डराय अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपन आसन तय जन मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ये चर्जा नानक आपन रूप आप यो परजा जय निर्मल पुरख पुरख बातो ताता बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शाल क्षेत्र लगत कहो कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावे तक से भूख कम द्रवतावे करण करावन करने हार नानक करते का ना है सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कलापे प्रवीण तय वेद कतेव कह कऊ चीन जब अपने आप उतारे तो सगन अब सगन कहा बिचारे जय अपन ऊंचा बनाप नेरा त कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय शल छेद बे समाया ऊहा किसे ब्याप तमाया पसुआ बया देश ते गुण का नाही प्रवेश जय एक एक एक भगवंता तय कौन अचंत के सला गय चिंता जय अपने आप आपत यारा तय कौन कथे कौन सुनने हार।

सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंधन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कर्म पौन बाणी वह संतर माहे चार गुण दै दिशे समाहे तस्ते भिन्न को ठाऊ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ भेद पुराण सिमृत मैं देख।

तारे समाये इसे हुए सो नाही बुरा उरा कह हो गिने कश करा आप ला कर दू तत ने किया पे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत बोत अपन संगराज ताकि कतमित कहीं ना जाए दूसरो ऐसा सोजी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तो सदा सुख हुए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस पर सा सब जगत राय।

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतराय चिंद आस अनित त्यागो तरंग संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेंती कर हो सा संग अगन सागर तरो हर धन के पर लिहो भंडार नान गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत सरस पियो।

सुन सुन अंत करे प्रभु गाजाए, प्रगटे गोपाल महंत के माथे शरण जोग सुन सरणे, प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उदरे तन गए साथे, शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए, मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम सा संग लैन।

असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास

तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज अमृतमई दात बख्श रहे हैं। सज्जन मिले सज्जना जिन सतगुर नाल प्यार, किन्ना प्यारा शब्द है सज्जन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज जी कहते सज्जन मिले सज्जना जिन सतगुर नाल प्यार। महाराज जी कहते वह सज्जन है जिन्हों मिलिया साडा सतगुरु नाल प्यार पै जाए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। वह सज्जन है असी दुनियावी वृत्ती राही एक शब्द बहुत यूज करते हैं वर्तने सज्जन। ये मेरा सज्जन है मित्र है, और मित्र कट्ठे होके करते की ने क्लब जाते ने शराब पीते ने। महाराज जी कहते जिहड़ा डोबण वाले पासे लै गया कादा मित्र है, उहदे वर्गा तां दुश्मन कोई नहीं बंदे दा। कला माफ करना ये शरीर नहीं बंदे दा जांदा, बड़ियां दे रिश्ते नाते परिवार पता नहीं की जिन्हों शराब का नशा खा जाता है। ते जिस बंदे ने यह लत बंदे नू लाई हुंदी है, आदत बनाई हुंदी है कोल बिठा बिठा के, उन्हों बंदा कहिंदा रहिंदा है मेरा सज्जन है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते जिहड़ी जिहड़ी घर वाली बरजदी रहिंदी है गल गल ते ना पिया कर वो दुश्मन लगती है। जे प्यो वर जे वो दुश्मन लगता, मां वर जे वो दुश्मन लगती है। वास्तव च आही खेड है बस। महाराज जी कहते जे को नाओ लए बदनामी कल के लखण ही। उल्टी चलती है खेड, जे नाम लेगा बदनामी होने लग जाती है, ते सीधा चलेगा बंदा सीधी गल का लोग पुट्ठा मतलब कढ़णगे। गल बंदा किस भाव च कह रहा है, किस प्रेम च कह रहा है, ये नहीं मायने रखती। गल पकड़ लेनी है ते अपने अनुसार मायने कढ़ लेने उहदे ते बंदे नूं परेशान करना है। सो कई बार जिन्हों असी सज्जन समझते हाँ वह साडा सज्जन नहीं हुंदा, जिन्हों दुश्मन समझते हैं वह दुश्मन नहीं हुंदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज जी कहते आओ दसीए सज्जन।

महाराज की सेवा संगत की सेवा की बणत बनाई है जिहड़ी जिन्नी भी सेवा असीं करदे आ इह जिहड़ा सिस्टम बनाया महाराज जी कहिंदे साडे भले लई बनाया। महाराज नूं थोड़ा लोड़ है किसी चीज़ की, कहिंदे साडे वर्गियां दा भला हुंदा रहिंदा बस उहनां दी बणाई बणतर दे नाल।

संत साजन पहे सर से सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहया पर पूरे बिनवंत नानक तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत

0: बैठा सोडी
1: पातशाह राम दास सतगुरु कहावे
0: बैठा सोडी पातशाह राम दास सतगुरु कहावे दिच्चे पूर्व देवना जिस दी बस से कर आवे
1: दिच्चे पूर्व देवना जिस दी बस से कर आवे
0: बैठा
1: सोडी पातशाह राम दास सतगुरु कहावे
0: बैठा सोडी पातशाह राम दास सतगुरु कहावे पूरन ताल खटाय अमर सर्वे ज्योत जगावे
1: पूरन ताल खटाय
0: अमर सर्वे ज्योत जगावे
1: पूरन ताल खटाय अमृत सर्वे ज्योत जगावे
0: उल्टा खेल खसम दा उल्टी गंग समुद्र समावे
1: उल्टा खेल खसम दा उल्टी गंग समुद्र समावे
0: दित्ता लईए अपना अंदित्ता के हाथ ना
1: दित्ता लईए अपना अंदित्ता के हाथ ना
0: फिर आई कर अर्जन पुत संसारी गुरु कहा
1: फिर आई कर अर्जन पुत संसारी गुरु कहा
0: जान न देसा सोडियों पुरस अजर न जरिया जावे जान न देसा सोडियों पुरस अजर न जरिया जावे कर ही की बात करे रहा
1: कर ही की बात करे रहा
0: कर ही की बात करे रहा धन धन रामदास गुरु जिन सिरिया तने सवार
1: पूरी हुई करामात आप सिरजन हारे तारे
0: सिखी
1: अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कार अटल था तोल तू ते अंत न पावन
0: जिनी तू से विया पाओ का
1: से तो पार तारे
0: लब लोभ काम क्रोध मार कड़े तो सब परवार धन तेरा थान
1: सच तेरा पैसा कारे नानक तू है ना तू है गुर अमर तू विचारिया गुडिठा तामन साधारिया नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया गुडिठा तामन साधारिया
0: चारे जागे
1: चौ जगी पंचाय ने आपे हो आपे ने आप साचे हो ना आपे ही थम खलो आपे पट्टी कलम आप लिखन हारा हो सब उम्मत आवन जावणी आपे ही नमा निरो तखत बैठा अर्जन गुरु सत गुरु का किवें चंदो
0: ऊग बांधते आप क्यों चक्की की जिनी गुरु ना
1: सेवे ओ मन मुखा पया मो
0: दुनी चौनी
1: करामा सच्चे का सच्चा डो
0: चारे
1: जागे चौं जुगी पंचायण आपे हो चारे जागे चौं जुगी पंचायण आपे हो
0: चाचरी शान गोविंदे मकंद

0: संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम से हस्ती कोड़े राम त्याय मुख न मोड़े दर प्रभ मंगना दर कदे न छो
1: ढाडी दर प्रमंगना अंदर
0: कदे न छोड़े
1: धन धन राम मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत तू ठाकुर ऊच भगवान नानक की प्रा बेनती अपनी भगती ला धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत तू ठाकुर ऊच भगवान नानक की प्रा बेनती
0: अपनी भगती ला
1: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज धन धन बाबा नानक कोट कोट प्रणाम कुलचक माफ तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धनबाद नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने स्वर का भला वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतह उठ गई सवा मलेशी कर पूरा पिस्सा ਅੰਕਾ ਵਾਜੀਏ ਫਤਿਹ ਹਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਜਗਮਾ ਜੋਤ ਵਿਰਾਜੀ ਅਬਚਲ ਲਗਨਿਆਰ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।